धुमधाम साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इजी मेरो दिया इजीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's faith.

0: रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने सोरुम दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि। फोन नम्बर 9816091013।
2: मामा हाई कार्यमा

दाम कति धुमधाम राइट छ फन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो डु द यङ इट्स सेफ

को अवसर साथ ही हरेक महीना होने भाग्यशाली उपहार में आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जितने मौका साइड बाई साइड र मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी र सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सटेल निःशुल्क डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दसैं को खुशी घर घर में उपहार।

दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0%